0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज
2: यति बेला मध्याह्नको 12 बजे

0: दो साल में उनसे प्रेम करती हूँ और उनसे मोर बोसेन हुई।
1: नहीं, तुम झूठ बोलो गंगा, तुम भी इनसे प्रेम करते हो, ये सब झूठो गंगा, ये सब झूठो।
0: ये सच्ची है सागर।
1: ठीक बा, तब तक तुम्हें बधाई बा। मैं तो सोचते रहूं हमरे से ज्यादा दूर वाले सर हमार माए गाड़ा नहीं करके मैंने मैं गलत सोच लू। ठीक बा, मैं जाई तू। नमस्कार हजूर।
0: ए सागर रुकना कितना लड़ी चाहिए छो।
1: मैं कह देता हूँ मौत तो हर पर इसे ना अधिकारे का बा।
0: मैं तो खिलाड़ कराता हूँ।
1: खिलाड़ फिर कोई ऐसी करत खिलाड़ के फिर तो सिमर आ जाए।
0: ए रुकना ए

सभी प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को दे स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन हरू।

0: 076-550-2 मोबाइल नम्बर 98-570-55-138।
1: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।

0: डैश के साथ ले लीजिए
1: एंसल पैक किन लीजिए जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी 25% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
1: एंसल पैक किन लीजिए शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग

0: आईसीयू एनआईसीयू डिलक्स बेड सहित को इंडोर सेवा संचालन भइरहेकोले निजी क्षेत्र को जेठो एस हस्पिटल बाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिनुहुन अनुरोध छ।
1: सम्पर्क लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवल छ। साबिक लुम्बिनी नर्सिङ होम प्राली। फोन 071-531-641 र 535-641।

0: कैश पैसा ले लीजिए,
1: एंसल पैक किन लीजिए, जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी, 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी,
0: कैश पैसा ले लीजिए, कैश पैसा ले लीजिए,
1: एंसल पैक किन लीजिए, सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री एफई 550 एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ। नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछ। सब एकदम खुसी हुन्छन्। तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठूलो भूकम्प आउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री एफई 550 सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा चार ठाकुरापुर कपिल वस्तुमा बिरामीहरूका लागि थप नयाँ सुविधाहरू।
4: कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर गोविन्द रावत, छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मुटु रोग, मृगौला रोग, पेट र आन्द्राको समस्या, कलेजो, थाइराइड र मधुमेह सहितका रोगहरूको पूर्ण परामर्श र उपचार।
3: हाड जोड्नी नसा तथा बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खानद्वारा हाड जोड्नी सम्बन्धी समस्या, हड्डी भाँचिएको, रडहरू राख्ने निकाल्ने, नसा च्यापिएको लगायत बाथरोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ।
5: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेलद्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ। पित्त थैलीमा पत्थरी, हर्निया, एपेन्डिक्स आदिको दूरबीन प्रविधिद्वारा अपरेशन, स्तनमा गाँठागुठी, फोका, घाउ, पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नुहुनेछ।
6: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर सन्देश आचार्यद्वारा गर्भवती महिलाको नियमित जाँच, डेलिभरी तथा शल्यक्रिया, पाठेघर सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया, दूरबीन प्रविधिद्वारा अपरेशन, परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा, महिनावारी गडबडी, सदोपेट दुख्ने तथा फोहोर पानी बग्ने समस्याको उपचार, बाजोपन, पाठेघरको क्यान्सरको जाँच तथा परामर्श।
7: वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा।
5: अन्य ओपिडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ।
4: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु, सम्पर्क 076-550-200, मोबाइल नम्बर 98-570-55-138।
3: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।
8: बड़ा निक लागे सखी अजुरिया में गाँव, बड़ा निक लागे सखी अजुरिया में गाँव, धीरे धीरे चल रे अजुरिया धरी धरी पाँव।
9: उफ, अब जाए के घर के देवाल लिपोती के ओराए लाग।
10: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
9: उराए लागो माँ।
10: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब दे लेके चली जाओ।
9: हो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
10: अरे बापा रे, अम्मा हमें साफ दसलीस। अरे बाप रे बाप, कहाँ दसलीस बिटिया?
9: यही दही हाथ में दसलीस अम्मा।
10: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमरे मुस्कान बिटिया का साफ दसलीस, अरे क्यों है क्यों है?
11: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
10: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का साफ दसलीस की काओ।
11: ना घबराओ जाए काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत होके बैठी रहो, ताकि बल्कि मुस्कान का सीधा सुताव जाए और ना हिलाव जाए।
10: वो थे बाबू मुस्कान, मुस्कान बेटा सीधा हो कि सुतो
9: होता है
11: ताकि आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से और हाथ के चूरिया खोल दिया जाए, दस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
10: हो थे बाबू और साफ दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के हो की
11: नहीं काकी नहीं, सांप दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए और कुछ नहीं खियावे चाहिए पनियो नहीं बुझा गए ना।
10: तब तो जहर मोहरा लाई के सपुआ डस लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू
11: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए बुझा गए ना।
10: बुझेन बाबू बुझेन
11: काकी, बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना जल्दी से जल्दी, साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये कहा जाए। तब तक हमरे के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम स्नेक बाइट नेपाल .org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम कैसे देख पड़ा, हाँ देव स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट खुली गवा हमरे इनके गांव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
10: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए
11: काकी, हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए मिला तो मुस्कान का बताए सका जात है।
10: जी वो थे बाबू चलो।
11: स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट खुली गवा हमरे इनके गांव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
10: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए
11: काकी, हम मुस्कान का न

0: बाद मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
1: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए। मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए। कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है, लेकिन वो डस सकत है। संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान कई के सही उपचार करे में सहयोग करत है।
0: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
2: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
3: तीनजेलसम्म तपाईँ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz ताजा सूचना, मनोरञ्जन, ज्ञान, खबर लगायतका विभिन्न मनोरञ्जनात्मक चेतनामूलक कार्यक्रम सँगै रहनुभयो। पीर व्यथा, हाँसो खुशी, आँसु रोधन, सुख दुःख, माया ममता, सद्भाव, सहानुभूति र भाइचाराको सम्मिश्रण सँगैको हाम्रो आवाज रोग शोक र भोग सँगैको यो जनजीवनसँग हिमाल, पहाड़, तराई, गांव बस्ती, पाखा पखेरा, शहर कुना कन्दरा, आम नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरूको त्यो बस्तीमा आवाज मार्फत हामी डुलिरह्यौं। रात बिस्तारै छिप्पिँदैछ, मौसमको विशेष ख्याल गर्नुहोला। घरको ढोकाको चुकुल राम्रोसँग त लगाउनु भयो होला नि, झ्याल खुल्लै हुन सक्छ। बस्तीका बत्तीहरू बिस्तारै निभ्दैछन्। बाहिर राखेको केही सामान भित्र राख्न भुल्नुभयो कि? प्यास लाग्न सक्छ, पानी नजिकै राख्नुहोला। भोलि दिनभरको योजना बनाउँदै मनभरिका पीड़ा हटाउँदै सूर्यको त्यो उदाउँदो रातो किरणसँगै भोलि बिहान हामी अवश्य आउनेछौ। जाँदा जाँदै सुनौलो भविष्यमाथि तुसरापात नहुन्, चाहना इच्छा रुचि पूरा हौन। यतिन्जेल सम्मको सहयात्राको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। भोलि बिहान तपाईको नयाँ जोश, जागर, उत्साह र उमङ्ग बोकेर अवश्य पनि आउनेछौ। शुभरात्री, शुभ सपनी।